चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

हार के वो जा रहा है कोई शबगम पर, वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए द।

हार के वो जा रहा है कोई शबे-गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुम्मो सागर उदासी,

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

SBS Saltation.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: शनिवार 4 जुलाई 2026 का दिन और SBS पर आप सभी का स्वागत है इस हिंदी कार्यक्रम में. और आप सभी को अनीता वरार का नमस्कार भी स्वीकार हो. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वर्णजरी लोगों और उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आइए आपको बताती चलूं कि आज कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे एक रिपोर्ट टॉयलेट में फोन्स और एक फैसल रिपोर्ट की, फैसल फरीद की भी रिपोर्ट आप सुन सकेंगे. बॉलीवुड के समाचार तो कार्यक्रम का हिस्सा होते ही हैं और इसके अलावा कुछ गाने भी आप सुनते हैं. तो यानी इस कार्यक्रम में आपकी पसंद की बहुत सारी बातें होंगी और मैं चाहूँगी कि आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो अपना संदेश भी मुझे भेजते रहें 0439799767 पर. और अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शनिवार 4 जुलाई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. प्रधानमंत्री अल्बनीसी ने कहा, कोट, मुझे अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का अपने N1 लीडर्स समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिश्ता पहले कभी इतना अहम नहीं रहा और हमारी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली को बढ़ावा देती है. इसके साथ उन्होंने आगे कहा, कोट, मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आवश्यक इकोनॉमिक पार्टनर है. प्रधानमंत्री अल्बनीसी पिछली बार नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे. क्लाइमेट चेंज और एनर्जी मंत्री क्रिस बॉविन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इस साल के UN क्लाइमेट समिट से पहले पैसिफिक क्लाइमेट फाइनेंस को चर्चा का एक अहम मुद्दा बनाने के लिए समर्पित है. फिजी और तुवालू अक्टूबर में इवेंट्स होस्ट करेंगे जिसका मकसद नवंबर में तुर्की में होने वाले COP31 समिट से पहले एजेंडा तय करना और बातचीत के मुद्दों को सुलझाना है. लिबरल लीडर एंगस टेलर लिबरल और नेशनल पार्टी के सदस्यों से वन नेशन की हालिया पोलिंग बढ़त को नज़रअंदाज करने की अपील कर रहे हैं और ब्रिस्बेन में कोलिशन के कन्वेंशन में अगले फेडरल चुनाव से पहले रिबिल्डिंग पर फोकस करने को कह रहे हैं. टेलर का कहना है कि उन्हें वन नेशन के लिए वोटर सपोर्ट में बढ़ोतरी से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई के आधिकारिक अंतिम संस्कार के लिए तेहरान की बड़ी मस्जिद के बाहर शोक मनाने वाले लोग जमा हो गए हैं. आधिकारिक अंतिम संस्कार कई दिनों तक चल सकता है क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को ईरान और पड़ोसी इराक दोनों के शहरों में ले जाया जा रहा है. सुप्रीम लीडर को ईरान पर US इसराइल युद्ध की शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ मार दिया गया था. सोकरूज के पूर्व खिलाड़ी जैक्सन इरविन का कहना है कि टीम अपने पहले नॉकआउट मैच में इजिप्ट से पेनल्टी शूटआउट में हारने के बाद बहुत दुखी है लेकिन इस हार से टीम और मजबूत होगी. स्कोर 1-1 से बराबर होने के बाद खेल रोमांचक पेनल्टी शूटआउट तक गया जिसमें सोकरूज 4-2 से हार गए. और NDTV से मिले समाचार के अनुसार भारत में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला भी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई शिकायतों और देहरादून के धार्मिक संगठन भैरव सेना के शिकायती पत्र के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, बताती चलूं कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर स्वागत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया इंडिया एनुअल लीडर्स समिट के लिए मेलबर्न में मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा 8 से 10 जुलाई तक है। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये रिपोर्ट कि टॉयलेट में फोन का प्रयोग, इसके ऊपर क्या जानकारी आपको मिलनी चाहिए, सुनिए। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन। मुझे लगता है कि आपने पहले भी ये रिपोर्ट सुनी है, लेकिन एक बार और सुनिए और उसके बारे में सजग हो जाइए।
3: टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने से हेमरॉइड्स यानी पाइल्स या बवासीर होने का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका में हुए एक अध्ययन के अनुसार ये बात सामने आई है, यानी अगर आप लूज स्क्रॉलर हैं तो टॉयलेट में ज्यादा समय बिताना आपके लिए हानिकारक है। SBS हिंदी पर यह है नबील हसन की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर से डॉक्टर प्रीति सिंह, जो एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, इस रिसर्च के बारे में हमें आसान शब्दों में समझा रही हैं।
4: मैंने देखा वो रिसर्च, इंटरेस्टिंग रिसर्च है। देखिए, ये जो रिसर्च है ये डायरेक्टली आपका कॉज और इफेक्ट का रिसर्च नहीं है, दिस इज मोर की कोरिलेशन। आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसके आपके डिजीज के रिस्क बढ़ जाता है कि नहीं। सो आई थिंक ये जो रिसर्च इज गुड, सही बात है। व्हेन यू सिट ऑन टॉयलेट, देखिए आपके चेयर में बैठने का तरीका और टॉयलेट में बैठने का तरीका दोनों डिफरेंट होता है। आपको जो पेल्विक फ्लोर होता है उसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं होता है व्हेन यू आर ऑन टॉयलेट सीट। तो कैसा होता है, जो रेक्टल वेन्स हम कहते हैं विच यूजुअली आर अराउंड आर बॉटम, वो इफ़ यू सिट देयर फॉर लॉन्ग टाइम स्लोली वो स्वेलिंग हो जाता है और जो कंटिन्यूस क्रोनिक आपका इन्फ्लेमेशन होता है तो वो जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे धीरे धीरे चला जाता है। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, उसमें एनी लिटिल स्ट्रेन, आप कॉन्स्टिपेशन हुआ है या फिर आपने एक्सरसाइज कर लिया या प्रेगनेंसी हो गई, तो उसमें वो हेमरॉइड्स फिर डेवलप हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ सिटिंग, स्पेशली सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट बींग अवेयर ऑफ कि क्या कर रहे हो आप, ये रिस्क आपका बढ़ जाता है।
3: अमेरिका के एक नए अध्ययन में जो पीयर रिव्यूड प्लॉस वन जर्नल में प्रकाशित हुआ है, उसमें 45 वर्ष और उससे बड़ी उम्र के 125 लोगों का सर्वे किया गया। ये लोग बॉस्टन के एक अस्पताल में कोलोनोस्कोपी करा रहे थे। उनसे पूछा गया कि वो टॉयलेट में फोन का उपयोग कितनी बार और कितनी देर तक करते हैं। सर्वे में पाया गया कि प्रतिभागियों में से 66% टॉयलेट में स्मार्टफोन का उपयोग करते थे और ये लोग टॉयलेट में फोन ना इस्तेमाल करने वालों की तुलना में लगभग 5 मिनट से अधिक समय टॉयलेट में बिताते थे। इसमें सबसे आम गतिविधियां न्यूज चेक करना और सोशल मीडिया का उपयोग करना थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्मार्टफोन का उपयोग अनजाने में टॉयलेट पर बिताए समय को बढ़ा सकता है, जिससे एनल टिश्यूज पर दबाव बढ़ सकता है और हेमोरॉइड्स का खतरा हो सकता है।
4: मोस्टली ये जो स्टडी किया गया है, देखिए एक हम कहते हैं कि हम ना इसको सिलेक्शन बायस भी कहते हैं जब हम कोई स्टडी कहते हैं, तो ये स्टडी किया गया है उन लोगों में जो कॉलोनोस्कोपी के लिए आए हैं, दोज पीपल हु हैव कम टू हैव अ सर्वेलेंस कॉलोनोस्कोप, जिनको मोस्टली हम कॉलोनोस्कोपी तभी करने जाते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती हो। तो एक सिलेक्शन बायस है इसमें कि पेशेंट को शायद कुछ प्रॉब्लम था, तो आपके मोस्टली लोगों को जिनको गट की इश्यू हुई होगी वही लोग कॉलोनोस्कोपी करने आएंगे। सो देयर इज अ बायस, बट प्रोलॉन्ग सिटिंग लाइक ये डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम रिसर्च किया गया है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन लीड टू हेमरॉइड्स। जब हमारे पेशेंट आते हैं और जिनको हेमरॉइड्स होता है, हम बोलते हैं आप घूमो फिरो या फिर लेटो ऑन योर टमी और लाई डाउन। अगर आप ज्यादा देर बैठोगे कहीं पे भी तो आपके हेमरॉइड के चांसेस बड़े हो जाते हैं। डेफिनेटली टॉयलेट सीट में द प्रॉब्लम इज कि पेल्विक फ्लोर पे आपका कोई सपोर्ट नहीं रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स देयर इज लाइक अ डोनट, तो उसमें आपके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल के ज़माने में जहाँ हम लोग फ़ोन बहुत यूज़ कर रहे हैं, लाइक द पीपल हु सिट ऑन टॉयलेट फॉर 10 minutes, 15 minutes, वहाँ पे आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर पीपल टू स्टॉप यूजिंग फ़ोन एंड स्टॉप स्क्रॉलिंग डाउन और इवन सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। So I think it's a good study, but there has been a lot more study done in past regarding prolonged sitting.
3: Dr. Preeti Singh आगे बताती हैं कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में फोन का अत्यधिक इस्तेमाल कई अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकता है।
4: There are things that you cannot even count on your fingers, like basic common thing, like हम देखते हैं teenagers, like I talk about this every day to my patient कि लोगों को आते हैं, लोग को हाथ में दर्द होता है, रिस्ट में पेन होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें आपकी नर्व थोड़ी दब जाती है बिकॉज यू आर होल्डिंग योर हैंड इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं डी क्वर्विन टेनोसाइनोवाइटिस, विच इज़ बेसिकली आपका जो टेंडन है, थंब का जो टेंडन है वो स्वेलिंग हो जाता है, और आप बिकॉज पीपल होल्ड ऑन टू अ फोन, जो बड़े फ़ोन होते हैं आप उसको पकड़ के बैठे रहते हो, तो आपका जो थंब है वो काफ़ी देर तक स्ट्रेन में रहता है। और फिर बच्चे आप देखते हो टीनएजर्स में आते हैं, बोलते हैं दर्द हो रहा है, एंड देन एज यू डू द टेस्ट यू रियलाइज कि हाँ ये तो डी क्वर्विन है। आप क्वेश्चन पूछते हो तो पता चलता है कि फ़ोन पकड़ रहे हैं, 4-5 घंटे तक फ़ोन पकड़ रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। फिर आपका शुरू होता है नेक पेन, शोल्डर पेन, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो इतने देर के लिए, एंड देन अगर आप फोन देख रहे हो 4-5 घंटे तो आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग दैट टाइम ऑन दिस, सो इट इज लाइक ए फ्लो इफेक्ट। फिर मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है आपका, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, मेंटल हेल्थ जो विच कैन इम्प्रूव बाई गोइंग एंड एक्सरसाइजिंग, यू आर स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन ए फोन on what we call as just nonsense scrolling. There is nothing you're learning from it. There is nothing we are going to get benefit. And most of the time, you're not even using your brain. जब आप फोन यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो इट इज़ नॉट जस्ट हेमरॉइड, हेमरॉइड इज जस्ट छोटी सी एक, डेफिनेटली इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल हु हैव इट, बट ये एक के बाद आप देखते रहते हो। छोटे बच्चों में आप देखो दे आर एडिक्टेड, बड़े में भी एडिक्टेड होते हैं, पर छोटे बच्चों में ऑब्वियसली देयर ब्रेन इज डेवलपिंग, उनका कुछ रेगुलेशन नहीं होता, दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देमसेल्फ, एंड दे आर लर्निंग इट फ्रॉम YouTube किड्स, व्हिच इज सो डेंजरस।
3: हेमोराइड्स की पहचान कैसे होती है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, वो आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और सूजे हुए ब्लड वेसल्स को देखने के लिए आपके एनल पैसेज की जांच करेंगे। प्रोफेसर रूपर्ट लियोंग, जो सिडनी के कॉनकॉर्ड हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर से मिलना इस बात की पुष्टि करने में भी मदद कर सकता है कि कोई गंभीर स्थिति जैसे बाउल कैंसर तो नहीं है।
5: The symptom of hemorrhoids is very non-specific. So passage to red blood can be something benign as a hemorrhoid, or it can be something more sinister that includes a bowel cancer. So anyone who's got bleeding in the bowel should present to the general practitioner, who will then perform an external examination.
3: SBS News के पेगी जेकोमोलोस की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
2: तो आप सुन रहे थे ये रिपोर्ट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बराबर सलाह लेते रहें। अब समय हुआ है एक अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद में।
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आगे कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे बॉलीवुड की खबरें और कुछ गाने भी, लेकिन अभी आइए सुनते हैं फैसल फरीद द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट।
11: वृद्धावस्था जीवन का एक ऐसा काल होता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काफी कमजोर हो जाता है। इसके बावजूद इस अवस्था में भी व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। एक प्रमुख समर्थन का साधन पुनः विवाह हो सकता है, जो वृद्धजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वृद्धावस्था में कई व्यक्ति अकेलापन और अवसाद का सामना करते हैं। जीवन साथी के निधन के बाद या फिर बच्चों के अपने जीवन में व्यस्त होकर अलग होने के कारण वृद्ध व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से भारी संकट का सामना करना पड़ता है। पुनः विवाह इस खालीपन को भर सकता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। यह अकेलेपन को कम करता है और व्यक्ति को एक नए रिश्ते में आत्मीयता और सहारा प्राप्त होता है। भारत में पुणे के रहने वाले माधव दामले एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो सीनियर सिटीजन्स के जीवन में एक बार फिर से आशा की किरण जगा रहे हैं। हैप्पी सीनियर्स उनकी संस्था है जिसके माध्यम से वो ऐसे सीनियर सिटीजन्स का पुनर्विवाह करवा रहे हैं। अब तक वो 90 ऐसी जोड़ी बना चुके हैं। सुनने में ये बात छोटी लगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे समाज में वृद्ध जनों का पुनर्विवाह इतनी आसानी से नहीं लिया जाता है। बच्चे उनकी अपनी कहानी, रिश्तेदार उनके अलग व्यंग, फिर समाज और सबसे ज़्यादा वित्तीय जिम्मेदारी, रोज़ का खर्चा कैसे सबसे निपटा जाएगा। लेकिन सोचिए, जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बच्चे को इस लायक बनाया कि विदेश में जाकर वो बस गए, लेकिन अब उन्हीं के किसी एक पेरेंट को अगर एक साथी की आवश्यकता होगी तो कैसे होगा, कौन इस अकेलेपन को भरेगा इत्यादि। ऐसे में माधव सर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माधव जी अपने बारे में बताते हैं।
12: बेसिकली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं। 1999 में मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था। तभी एक मेला लिया था हम लोग ने, तो मैट्रिमनी के बारे में। उसमें से एक आइडिया आया कि जो सीनियर सिटीजन्स है तो उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उनके बच्चे लोग अभी आजकल तो बहुत बच्चे लोग फॉरेन में गए हुए हैं, बहुत लोग दूसरी जगह रह रहे हैं, तो जो सीनियर्स जो है और अगर सिंगल है तो उनका प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो तभी से मैंने सोचा था, लेकिन एक्चुअली चालू करने में मेरे को 2012 साल निकल गया। मेरा 2012 साल में फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया ज्येष्ठ नागरिक लिव इन रिलेशनशिप मंडल, जो सिंगल सीनियर्स के लिए काम करता था। और बाद में स्टार्टिंग में तो बहुत लोग का अपोज भी था, लेकिन कुछ दिन के बाद में लोगों को समझ गया कि ये आगे जाके एक्चुअली ज़रूरत है लोगों के लिए। तो बाद में 2015 साल के बाद में अच्छी तरह से सेट हो गया हमारा ये मंडल। बाद में उसका नाम चेंज करके हमने हैप्पी सीनियर्स बोल के उसका नाम दिया।
11: अगर आप सोच रहे हैं कि माधव जी मात्र एक मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृद्धजनों के जीवन में पुनर्विवाह न केवल उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकता है बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। एक नया जीवन साथी वृद्ध व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संतुष्टि ला सकता है जिससे वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। माधव जी को इस काम को करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या दोनों साथी जीवन भर साथ दे पाएंगे? वित्तीय व्यवस्था कहाँ से आएगी? क्या वो दोनों इसके लिए तैयार हैं? क्या उनके बच्चों को उनके इस कार्य की जानकारी है? भविष्य में उनका रिश्ता क्या चल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या दोनों वास्तविकता में इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? कहीं कोई धोखा तो नहीं है? सब कुछ माधव जी करते हैं और पूरे तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी रहता है। जब दोनों व्यक्ति सारी योग्यताएं पूरी करते हैं तभी वो एक नया रिश्ता बनाते हैं।
12: बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, पहले काउंसलिंग ही हमारा मेन पार्ट है। कोई भी हमारे पास आया तो बेसिकली हम लोग काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के बारे में बाद में एक्चुअली देखते हैं कि रियली वो सिंगल है कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आदमी सिंगल नहीं रहता है या औरत भी सिंगल नहीं रहती है, लेकिन वो बताते हैं कि मैं सिंगल हूँ, मेरा डिवोर्स नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को करना है, मेरे को सामने वाला डिवोर्स नहीं दे रहा है। और एक चीज रहती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैडम एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर सीनियर्स को साथ में लाना है तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। अगर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है तो एक दूसरे के साथ में रहना भी मुश्किल है, तो वो भी हम लोग देखते हैं पहले। तीसरी बात है कि बच्चे लोग से परमिशन लिया है कि नहीं, या बच्चे लोग को इन्फॉर्म किया है कि नहीं। अगर इन्फॉर्म नहीं किया रहेगा तो बाद में घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो जनरली मॉडल ऐसा है कि एवरीथिंग हम काउंसलिंग के माध्यम से मालूम करने के बाद में ही सब काम करते हैं। नहीं नहीं, हम लोग पैसे के बारे में कुछ नहीं करते, एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ में वो करना है। हम लोग खाली कैसे करते हैं, एक दूसरे से पहचान करके देते हैं, उसमें हम लोग एक कुछ पिकनिक निकालते हैं, एक दो तीन दिन का ऑल्टरनेट स्टे ट्रिप निकालते हैं, उसके साथ में मैक्सिमम लोगों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं। और वो साथ में लाने के बाद में अगर दूसरे को एक दूसरे को लगता है कि मैं उसके लिए मैच हूँ तो ऑफिस में आके हम लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। और फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो सब एक दूसरे, हम लोग फाइनेंशियल इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करते। खाली उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर जो औरत है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं, क्योंकि पैसा है लेकिन वो बच्चे लोगों के पास है, बच्चे लोग उनको हेल्प नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग मॉडल हमने डिसाइड किया है कि जो जिसके साथ में वो रहेगी तो उसने कुछ ना कुछ डिपॉजिट उसके नाम से करना है कि वो सिक्योरिटी के लिए, उतना ही खाली देखते, बाकी हम कुछ नहीं देखते। और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करके लेते हैं हम दोनों में से, तो एग्रीमेंट ऐसा रहता है कि अगर कुछ मिसशीव किया मेल ने तो वो फीमेल के जो डिपॉजिट है वो फीमेल को पूरा उसको उसके पास जाएगा, अगर फीमेल ने कुछ डिस्टर्बेंस किया तो उसका पैसा उसको वापस मिलके दोनों अलग हो जाएंगे, वो एक देखते हैं हम लोग। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, अभी यही साल में हमारा 90 जोड़ी बन गया, उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक हमको।
11: भारत जैसे समाज में वृद्धजनों के पुनर्विवाह को लेकर कई सामाजिक भ्रांतियां और पूर्वाग्रह होते हैं। हालांकि समय के साथ सामाजिक सोच में बदलाव आ रहा है। अब अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वृद्धावस्था में पुनर्विवाह एक सकारात्मक कदम हो सकता है जो व्यक्ति की खुशहाली और मानसिक शांति में योगदान करता है। इसे एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है। यकीन मानिए, माधव जी ने जिनका भी पुनः विवाह करवाया है उनमें से अधिकतर इनसे मिलने आते हैं और ये सब एक परिवार के सदस्य हो चुके हैं और इनका ये परिवार बढ़ता जा रहा है।
12: अभी आप देखो कि 4 या 5 चैनल्स पे वो मुलाकात होगी, सब हमारे जो जोड़ी बन गए वो लोगों की भी मुलाकात लेते हैं। वो सोनी टीवी में जो गाने का प्रोग्राम रहता ना, उसमें भी हमारे एक जोड़ी को इंट्रोड्यूस किया था और उनका हम लोग गेट टुगेदर करते हैं साल में एक बार, तो लोग आते हैं, मिलते हैं, हमारा रिलेशन उनसे बहुत अच्छा बन गया है, घर जैसा ही है, लोग आते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग बिल्कुल नहीं आते, लेकिन 60-70% लोग तो आते ही है।
11: हमें समाज में वृद्धजनों के पुनः विवाह को समझने और समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकें। माधव जी का कार्य इस कारण सराहनीय है क्योंकि कोई व्यक्ति वृद्ध हो सकता है लेकिन प्यार नहीं, उसे सहारे की आवश्यकता हमेशा रहती है। लखनऊ से फैसल फरीद।

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
4: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: sbs.com.au/hindi ko apna online home banaiye. Taza tareen khabrein अपनी भाषा में पाइए sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
8: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। आइए श्रोताओं, चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और वहां की ये समाचार सुनते हैं।
9: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म हेरा फेरी 3 की। फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन अब कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है। खुद प्रियदर्शन ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि कई कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों के चलते ये फिल्म शायद कभी सिनेमाघरों में रिलीज ही नहीं हो पाएगी। क्या आप यकीन करेंगे कि पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों की किताब में ऐश्वर्या राय का गाना निबुड़ा शामिल किया गया है? किताब भी संस्कृति या फिल्म विषय पर नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा की है। ओडिशा में पांचवी कक्षा की अंग्रेजी की किताब में छपा ऐश्वर्या राय का चर्चित गाना दरअसल कथित तौर पर गलती से छाप दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की आगामी फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में दिशा पाटनी का शांत और भावनात्मक अंदाज फिल्म की कहानी में उनके किरदार के महत्व का संकेत देता है। सूत्रों के अनुसार दिशा पाटनी का किरदार कहानी का भावनात्मक केंद्र है। फिल्म में दिशा पाटनी की जोड़ी अभिनेता इमरान हाशमी के साथ नजर आएगी। फिल्म बेबी टू डाई डू का नया गाना इश्क कमीना रिलीज कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जल्द अपना बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़कर नए इमारत में शिफ्ट हो सकते हैं। लगातार मिल रही बिश्नोई गैंग से धमकी फायरिंग की घटना को इससे जोड़ते हुए देखा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के बाद सलमान पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बांद्रा में बनने वाला नया 6 मंजिला घर समुद्र किनारे होगा, जो सलमान खान के मौजूदा निवास गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने सिनेमा घरों में अपने रिलीज के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है बल्कि इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1,813,38,00,000 रुपए से अधिक की शानदार कमाई की है। ये फिल्म दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। निधि दत्ता ने फिल्म बॉर्डर 3 का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की कहानी दिखाई जाएगी। वो भारतीय सेना में एक सीनियर जनरल ऑफिसर थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि हरबख्श सिंह को पंजाब का रक्षक माना जाता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की लाइफ को पर्दे पर दिखाया जाएगा। सनी देओल तीसरी बार भी इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे और दर्शकों का दिल

0: जीतेंगे। महाराज म्यूजिक के बैनर तले रिलीज हुआ नया म्यूजिक वीडियो जूजूजू दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस गाने का निर्माण और निर्देशन अश्विन महाराज ने किया है। गाने को मशहूर गायिका शोना गोंसाल्वेस ने अपनी आवाज दी है। जगत में इन दिनों सच्ची और संवेदनशील कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में निर्माता विजय कुमार अपनी आगामी फिल्म डीजीपी कश्मीर को लेकर पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत और बर्फीली वादियों में शुरू होने जा रही है। निर्माता विजय कुमार ने कहा, हमने सेना और सुरक्षा बलों की बहादुरी के कई किस्से सुने हैं, लेकिन कश्मीरी पुलिस के उन स्थानीय जवानों के योगदान को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने देश और नागरिकों की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। शाहरुख खान ने हाल ही में सिनेमा में 34 साल पूरे कर लिए हैं। वो इतने मशहूर हो चुके हैं कि फैंस उनसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी जानना चाहते हैं। शाहरुख खान मंगलुरु में एक इवेंट में शामिल हुए। इवेंट के दौरान शाहरुख ने अपनी जेब से बचपन की एक पुरानी तस्वीर निकालकर बताया कि ये मेरे बचपन की एकमात्र तस्वीर है जो मंगलुरु में ली गई थी। मैं बिना कपड़ों के एक बाल्टी में बैठा हूँ। शाहरुख ने अपने बचपन के शुरुआती 5 साल मंगलुरु में अपने नाना इफ्तिखार अहमद के साथ बिताए थे। शहर के साथ उनके इस जुड़ाव ने इस पल को खास बना दिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर का मानना है कि भारतीय सिनेमा अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां किसी फिल्म की पहचान उसकी दमदार कहानी और किरदारों से होती है। फिल्म अल्फा को लेकर उन्होंने कहा कि ये फिल्म पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए दो महिला कलाकारों को बड़े एक्शन स्पेस के केंद्र में रखती है, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। वेलकम टू द जंगल की मेकर्स ने फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा रिलीज कर दिया है।
1: मेरे पैसे को जो देखे पीट दूं मैं उसको लेके, कर लो चाहे जादू टोने मुझसे ना ये पैसे छूटे।
0: हैवान में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सैफ अली खान भी उनके साथ नजर आएंगे। फिल्म के जरिए दोनों एक्टर्स 18 साल बाद साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। इससे पहले आखिरी बार दोनों एक्टर्स 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में साथ दिखाई दिए थे। फिल्म हैवान 2016 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ओप्पम की रीमेक है। अक्षय इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म इस साल 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म बेबी डू डाई डू, जिसमें अभिनेत्री हुमा कुरैशी भारत की पहली देसी हिट वुमन के किरदार में नजर आएंगी। अब फिल्म का ग्लोबल थिएट्रिकल विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत इसे जीसीसी देशों ऑस्ट्रेलिया और एम्स्टर्डम क्षेत्रों में भी रिलीज किया गया। फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। म्यूजिक कंपोजर यार रहमान को अमेरिका के वॉशिंगटन में एक समारोह में अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रहमान ने एक्स पर एक पोस्ट पर मशहूर फिल्म मेकर पीटर जैक्सन से मिले गोल्डन प्लेट अवार्ड की तस्वीरें शेयर की। यार रहमान ने लिखा, अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। देश के सबसे चर्चित स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम के जीवन पर आधारित कोर्ट रूम ड्रामा प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे राजकुमार राव एक बार फिर अपने एक ऐसे अवतार में दिख रहे हैं जो सीधे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म की कहानी उज्जवल निकम के पूरे करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और हाई प्रोफाइल दौर के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी का मुख्य केंद्र 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले और जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल कसाब का वो अदालती ट्रायल है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ओ मेरे बलम आखिरकार रिलीज कर ही दिया गया।

0: बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही, बाय बाय।
1: तो श्रोताओं, आप बॉलीवुड की खबरें सुन रहे थे और आपने कुछ नई बातें भी जानी होंगी। आइए, हाँ, इस बीच में हमारी श्रोता हेमलता जी का संदेश भी मुझे मिला है। हेमलता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आप कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी की पसंद पर ये गाना। गाना थोड़ा पुराना है लेकिन ये चूंकि उनको पसंद है और मुझे लगता है कि इस गाने में एक बहुत ही सीख भी है। और जिन लोगों ने पहली बार अगर ये गाना आप सुन रहे हो तो पहचानिए तो भला कि ये किसकी आवाज़ है।

जी हाँ, ये गाना था फिल्म देवदास का। और हमारी श्रोता अमिता, राजीव जी, शिबू जी और एक और श्रोता जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब तो मुझे लिख भेजा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चाहे इसी समय आपने अपने संदेश भेजे, लेकिन आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लग ही रहा होगा। चलिए एक और गाना सुनते हैं। और अब इस गाने के लिए मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगी कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और इसके कलाकार कौन हैं। कलाकारों को याद कीजिए और फिल्म को भी याद कीजिए, देखिए आपको याद आता है।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

0: SBS South Asian.
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
2: दिक्कीरो दिक्कीरो

0: Station but do
1: dancing far and style.
2: Slow down, boys.

सियार जैसी होशियारी फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है कि या गलत को भी सही तरह से करना।

नेचुरल

तूने किया कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: ए राजा बजाना।

0: हमारे बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद। खाना खाके जाइएगा।
1: वॉल टू वॉल म्यूजिक प्लेइंग नाउ ऑन SBS साउथ एशियन।

Desi Dance Party on SBS South Asian.

Yo, Honey Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार

मेथू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

हीरो देसी हीरो।

0: SBS South Asian.
1: Let's go crazy.

हो गई सारी सोनिया टोल वाले नचण दे तेरे साउंड ते लक हिलाउणा पैर फ्लोर पे रखण दे हो गई

0: SBS South Asian.
1: Yo, lavish.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: SBS South Asian.
1: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
2: कुछ भी करा रहा हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।

0: Your news from here.
1: And hits from home. SBS South Asian.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: Bollywood Session on SBS South Asian.
1: अरे यूं के बड़ा गोरी भाई बचा